0: मैनेजर साहब, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: जब तक तुम्हारा 2 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तुम्हें अपना पासपोर्ट मिलेगा और ना तुम अपने देश जा सकते हो।
0: किस बात का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा था मुझे हर महीने मेरी सैलरी मिलेगी, नहीं मिली 8 महीनों से, और अब चाहिए भी नहीं मेरे को। मेरे को मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: तुझे एक बार कहा समझ नहीं आता, जब तक तेरा 2 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तू अपने घर जाएगा और ना अपने देश। अब निकल यहाँ से, चुपचाप काम कर अपना।
0: घर नहीं जा सकता? हे बाबा श्याम, अब तू ही धनी है।
1: तुम्हारा बाबा श्याम धनी है यहाँ से 7 समुंदर पार। यहाँ पे तुम्हारा धनी वही है जिसने तुम्हें वीजा दिया और जिसके पास तुम्हारा पासपोर्ट है।

तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ सिम मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, ठीक है।

0: बाबा आपका चिंटू आ गया।
1: तुझे अपने कंधों पे कैसे उठाऊं?

89.6 गंगापुर सिटी।

0: फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनो और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने ऋषि और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 आपकी पसंद।
1: रेडियो डीएस 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर

0: 8 में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे हल्लू फरमाइश का।
1: बिल्कुल सुना रहे मैम आपकी। हेलो
2: हेलो गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
2: सर सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं, मोनिका।
1: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
2: सर आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब उसे कहते हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।

0: हार्ट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है याद रखें हेलमेट पहने सीट बेल्ट लगाएं ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें सड़क किसी की जागीर नहीं सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है यातायात नियम अपनाइए सुरक्षित घर जाइए आपकी जिंदगी अनमोल है इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें रेडियो डीएस एवं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्कार, आपका नाम बताएं।
0: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: उमा शंकर जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है सर, बस अब मौसम अच्छा हो गया, धूप निकलने लगी मध्य प्रदेश में। बाहर निकल रही सर? नहीं निकल रही,
1: बस निकल रही है सर। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो रिए से?
0: जी सर, जी वो क्या बोलते हैं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
2: रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर आपका।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते,
1: रसूल खान बोल रहा हूँ।
0: रसूल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सेवा
0: सेवा चारोली गांव गंगापुर सिटी से। बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी से?
1: सरस्वती चंद्र का जो गाना है
0: जी,
1: फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।
0: क्या बात है सर, क्या बात है। आज तो सर मेल का जमाना आ गया, खत का खत्म हो गया।
1: नहीं नहीं, मेल का जमाना आ जाओ, लेकिन गाने के जो बोल हैं बड़े प्यारे बोल
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का। बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद
1: आपको भी।

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डीएस 89.6।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: जितेश मेरा।
1: जितेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: आदर्श नगर।
1: आदर्श नगर से क्या करते हैं आप? क्या करते हैं जितेश जी? क्या करते हैं आप?
0: मैं पढ़ाई करता हूँ।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो डीएफ से?
0: वो फूला गंभीर।
1: हाँ जी,

0: 8 में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताए सर?
2: नाम गोविंद प्रसाद गुप्ता।
1: गोविंद प्रसाद गुप्ता जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: गंगापुर से।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: वृंदावन की आरती।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी
2: आदर।
1: बिल्कुल

0: आपको।
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर आपका। चौधरी जी बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुपर हिट है सर।
0: हाँ जी,
1: सुपर हिट गाना
0: बताएं।
1: जिंदगी मौत ना मिल जाए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फ्रॉइस के बेहतरीन गाना रेडियो डेज में सुन के। धन्यवाद। हेलो,

0: हेलो,
1: नाम बताए सर।
0: मेरा नाम है प्रियांश मीना।
1: प्रियांश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं सवाई माधोपुर मलाना डूंगर माणोली से बात कर रहा हूँ।
1: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएक्स?
0: मैं सुनना चाहूंगा बरसात।
1: बरसात सॉन्ग?
0: यस
1: जी बिल्कुल सुना रहे सर आपको, आपकी फरमाइश करता है। गाना रेडियो डीएक्स में खोल के धन्यवाद।

0: नमस्कार जी।
1: सर नमस्कार, नाम बताए आपको?
0: जम्मू से है केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
1: केशव जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जम्मू से, सैनिक रोनी, जम्मू सैनिक रोनी से।
1: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तभी आज सपने साजन का हमें टाइटल गाना सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुना रहे हैं आपको, आपकी प्रोवाइस से बेहतरीन।
0: थैंक यू।

0: 96 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: रेडियो डीएस 89.6

0: कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मॉर्निंग।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
2: निशा गंगा का सिटी से।
1: गाना बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: खम्मा गनी।
1: हाँ जी,
2: खम्मा गनी
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश पर। ये खम्मा गनी

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:02 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, नाम बताए सर।
0: नमस्ते सर,
1: नाम बताए।
0: शैलेंद्र सिंह गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं गुर्जर जी?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: सचिन से वाला कोई शब्द नहीं चला
1: सुना रहे हैं सर। आपकी फरमाइश कैसे है?

0: जी नाम बताएं।
1: नमस्ते सर, मैं शांति पटेल बोल
0: रही हूँ। नमस्ते शांति पटेल जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: बताए मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: भोपाल से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से। बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जय बाजी बाजी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश का गाना। रेडियो डीएस में खोल के धन्यवाद।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बनियापुर सिटी।
0: बताए मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कुंडली कुंडली नैना विच तेरा नाम मुंडिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना। रेडियो देश में कॉल किया धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: सिमरन पटेल, सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: पटेल जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी से?
1: धड़कन पिक्चर का।
0: कौन सा गाना है धड़कन पिक्चर का?
1: नाना करके प्यार में कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डी में। कुल क्या धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: जी सर नमस्ते, हमारा सर अनुज पटेल है।
0: अनुज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर हम सागर जिला पंडित चमारी से बात कर रहे हैं।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर हमें आप सुना दीजिए, हम तेरे बिना रह नहीं सकते।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: विक्की।
0: विक्की कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर से जी।
0: बताएं विक्की, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: शोले।

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का जय जय अपनी मिट्टी अपनी कहानी गंगापुर की बात

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बंगलापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: डालना नूडिया के चला तो कोई सा भी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सुनो।

96 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 96 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: राकेश जी,
2: राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सिंगापुर से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चांदड़ी रात में गोली लगे ले खतर नाड़ी हाथ में।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में सुन के। धन्यवाद।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नमस्ते, नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर राजस्थान।
0: बताएं रूपचंद जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: जी सुनना है, पिक्चर का नाम है कच्चे धागे और गीत है दिल परदेसी हो गया।
0: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करेगा।

0: दर्शन करें। गाड़ी चलाने के समय
1: मोबाइल इस्तेमाल।
2: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका?
1: सजादी
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: जिम्मेदारी है
1: आज 15 अगस्त
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का
1: यार। लीडर में हो रहे भाई साहब
2: बिल्कुल आएंगे सर जल्द एक

0: सुनना।
1: आरती जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सिंगापुर सिटी से।
1: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: झोल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएसएम कुल के। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: नाम बताएं।
1: कोमल।
0: कोमल कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: शीशे की उम्र प्यार की।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फिल्म।

0: हेलो हेलो।
1: हाँ जी सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: गुड्डू टेलर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: खानपुर बड़ौदा।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: वो सावन के महीनों में मुझको बुलाया।
0: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
1: झूलों ने मुझको बुलाया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डिश में कुल के।
2: सावन के

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुना चाहोगे?
1: बापू मेरा एक राजा, गुरुजी मारा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अंकित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मिर्जापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुम ही आना।
1: कौन सा?
0: तुम ही आना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रामायण
1: ओ किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: सिंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे देश के लिए न्यू आशा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपको, फरमाइश करूँगा।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मनुआ।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चदरिया जीने से जीने।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी। मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

प्रायोजक है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला संस्थान बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी। जी हाँ, बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल यानी ज्ञान और संस्कारों के साथ आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे संभाग का पहला आधुनिक तकनीक शिक्षण विद्यालय, जहां आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनके संस्कारों, उनकी प्रतिभा और उनके सर्वांगीण विकास पर दिया जाए

आयोजक है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला संस्थान बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी। जी हाँ, बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल यानी ज्ञान और संस्कारों के साथ आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे संभाग का पहला आधुनिक तकनीक शिक्षण विद्यालय।

के संग हर दिन खास है, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया, खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

के इस खूबसूरत और सुरीले कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला संस्थान बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी। जी हाँ, बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल यानी ज्ञान और संस्कारों के साथ आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे संभाग का पहला आधुनिक तकनीक शिक्षण विद्यालय, जहां आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनके संस्कारों, उनकी प्रतिभा और उनके सर्वांगीण विकास पर दिया जाता है विशेष और व्यक्तिगत ध्यान। तो

0: DS. सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS. 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर. सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6.
2: दोस्तों वक्त

चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रेडियो डीएस, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना तो सुपर हिट है।
2: हाँ जी बताइए।
1: सुन ओ हसीना काजल वाली।
2: ओ हसीना काजल वाली
1: जी।
2: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: आदरणीय दीदी सादर नमस्कार।
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: मैं आपसे जाना चाहना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
3: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
2: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और रेडियो डीएस सुनकर बहुत
3: सही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत ओके सर सुना रहे हैं आपकी। फरमाइश करिएगा ना, रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन मंगल, नमस्कार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मोनिका।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: रेलवे कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: कांटा लगा।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिवार में।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुरी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कमल डीजे पर।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, चलिएगा ना।
2: It's vampire.

0: नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: खंडी राम गुजर बोल रहा हूँ, गाँव भद्रिका से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: और गाना तो यही है, भंवरे में खिलाया फूल फूल को ले गया राम कुमार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू सर,
1: यू वेलकम।

0: नाम क्या है आपका?
1: अनिल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: क्या
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कब्जे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिवार।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हेलो अजी नाम क्या है मैं कौन से बात कर रही गंगापुर सिटी कौन सा गाना सुनना चाहोगे
3: लाल चंदरिया वाली पे दिल आया रे
2: ओके मैम सुना रहे आपकी शर्मा एक परेगा ना

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ पेट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, जय जय, अपनी मिट्टी अपनी कहानी गंगा।

की खुशबू रिश्तों की मिठास, गंगापुर सिटी है दिल के पास, गलियों में यादें चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खास, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया, खेती की खुशबू शहर की रौनक, अपनों की बातें दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। लाख बुलाना चाहो फिर भी नहीं बुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा मैं।

0: गया है लिखा हुआ है कि जोड़े आसमान में बनते हैं, हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथ।
1: दोस्तों शाम के साथ बज चुके हैं, लेकर हाजिर हूँ थोड़ी देर में आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
0: उसने भी इस बात पर तभी यकीन किया।
2: घड़ी खम्मा सवाई माधोपुर, थारो मारो रेडियो डीएस।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती है विशेष

भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं, तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में।

सपनों के संग हर दिन खासक, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया, खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली,

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रख

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती है।

आपके पसंदीदा गीत, आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
3: खम्मा सवाई माधोपुर थारो मारो रेडियो डीएस

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती